0: अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: वेरी गुड। एक ना मैं थोनों मिस्टर सिंह पीजी की डील दस दवा। हने हने मैनू नवी डील मिस्टर सिंह ने भेजी है। मैगा डील लिमिटेड टाइम, 2 लार्ज पीजे, 4 4 टॉपिंग, 4 डिप ते 2 लीटर कोक फ्री, $40 चार। लिमिटेड टाइम ऑफर है, 2 लार्ज पीजे, 4 4 टॉपिंग, 4 डिप ते 2 लीटर कोक की बोतल फ्री है $40 च। वाह, कॉल कर लो 905-500-4000 905-500-4000। मिस्टर सिंह पीजा मल्टीपल लोकेशन इन्हों दियाँ कैनेडा वाइड 30 लोकेशन ने 30। वाह, 905-500-4000 905-500-4000 905-500-4000 मिस्टर सिंह पीजा 905-500-4000 के उत्ते संपर्क तुसी जल्दी जल्दी जल्दी कर लवो। थोड़े लिए अवेलेबल ने। तो सारे याद ही रखो मैसेज कि तुसी अगर अपनी गड्डी का कोई काम करवाना ना तो नाम एको एक है, याद तुसी रखना साढ़े राज भाजी नू स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर तो। राज भाजी थोड़े लिए अवेलेबल।

सतगुरु होई दयाल तसरदार पूरी है, सतगुरु होई दयाल न कब हूँ चूरी है, सतगुरु होई दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होई दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख दिते हुए सारे रंगा नू माणदे हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत श्रोतियां दे नाम रेडियो प्रोग्राम उडान

मई नूं एक मूवी रिलीज़ होण जा रही है चढ़दी कला। एमी विर्क साहब उहदे विच ने, जरनैल बाई जी, जरनैल सिंह उहनां दे विच ने, और हिम्मत संधू होना दी, और नाल दी रूपी गिल होना दी बाकमाल अदाकारी तुहानूं वेखण नूं मिलेगी। एक चढ़दी कला दा प्रतीक ते मूवी दा नाम वी है चढ़दी कला। सो 29 मई नूं सिनेमा घरां दे विच आ रही आ, ते कोशिश करांगे कि एमी बाई हुणां नूं आपां इंटरव्यू ते वी लैके आईए। सो बहुत जबरदस्त मूवी आ रही आ पंजाबी इंडस्ट्री दे विच। हुण तक ना मिलदा पिछला साल बहुता माड़ा ही रहा आ, कोई वधिया मूवी सानूं वेखण नूं मिली नहीं आ। तो उम्मीद करदे आ कि इस मूवी दे उपरों सानूं बहुत खूबसूरत मैसेज वी मिलणगे, ते सानूं इतिहास दे बहुत सारे पन्नियां ते निगाह मारन दा वी मौका मिलना। सो ऐसियां मूवियां जदों आउंदियां, जदों इतिहास दे पन्नियां नूं फरोलिया जांदा, ते जरूर तुसीं अपने बच्चों नूं, अपने परिवारों नूं ऐसियां मूवियां दिखाया करो। सो जरूर पहुंचो, 29 मई नूं सिनेमा घरों से लग जानी आ चढ़दी कला।

0: हो सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
1: 647-706-6640।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर नॉट
3: पर हुन थोनू कार लेन ली रेडी करनगे मॉर्गेज द किंग गिरीश शर्मा।
4: रेजिडेंशियल कमर्शियल रीफाइनेंसिंग डेट कंसोलिडेशन सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस प्राइवेट फंड्स
3: सब ले याद रखो गिरीश शर्मा प्री अप्रूवल ही नहीं क्लोजिंग तक देंगे पूरा साथ डीलिंग विद ऑल बैंक।
4: कॉल 647-606-8110
3: और विजिट शर्मा मॉर्गेजेस डॉट कॉम।
5: ओए ट्रक कारा लिया जब वेखो एदिया कमानिया इटलिया रहंदिया की करा
6: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावा जे अते गैरी ने खोल दिती है जीटीए विच ट्रकां दे स्प्रिंगा दी पहली शॉप पीएनजे स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
7: पहुंचो 5530 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
8: इथे पी लाइन लेजर मशीना नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दिया मशीना नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध भी है जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहंदे हो
6: कॉल करो जे एंड गैरी नू
8: 905-459-5533
6: 905-459-5533 ते
8: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
9: नाले चोपड़िया नाले दो दो
10: आहो जी मेनू भी पता नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना यानी दाना मंडी जिथे हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी दाला मसाले पिकल्स चौल चाय पत्ती फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
9: डेयरी प्रोडक्ट्स स्नैक्स फ्रेश चिकन बीफ गोट मीट सब कुछ मिलूगा इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे चना भटूरा वेज थाली वेज बिरयानी बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो
10: एक बार आओगे फिर बार बार आओगे
9: अनबीटेबल प्राइसेस सेल ऑल टाइम दाना मंडी 1729 Queen Street, East Brampton, Major Intersection, Queen and Bramley.
10: Call Gagan or Gurinder at 905-286-9257.

0: हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी
1: 905-459-5533
2: 905-459-5533
1: PNJ Spring Wheel Alignment।

0: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स, कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com. Summit Realty Expert.
1: अनोखी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू द

0: नोट बिल्कुल रखो।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोले स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है। ते इन्ने नाल

0: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
1: इंश्योरेंस किसको करवांदा यार?
2: मैं कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी का हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी को करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर तो दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਣਤਾਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਸ ਤੱਗੜ ਦੇ ਨਾਲ।
1: Disclaimer, the content shared on this radio show is for informational and entertainment purpose only. The hosts are not liable for any actions taken by listeners or callers based on the information provided. Enjoy.
2: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6427702 V23 license number 10394।
3: मैं नवा कार लिया है, तेनु पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लई है, एक भाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी, नाले मैं सोचदा हूं वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए, हुन समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कितों लईए।
4: हो जी, ए विच समझण वाली केड़ी गल है, सारे कम वाले इक्को जगह। चलो मिसेस अगर स्टील ते अप्लायंस जंक्शन ते, इरदे प्राइस ते सर्विस नु कोई बीट नहीं कर सकदा। तुसी 6 मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकदे हो, सारे ब्रांड्स दी ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने। मिसेस अगर स्टील दी अप्लायंस जंक्शन, कॉल 905-450-0054 905-450-0054।

0: रात हमें छड़ देनी है। पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने। मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905 874 98।

0: हाँ जी भाजी, की कहना चाहते हो? बलदेव भाजी, गले ही साफ करी
1: नौ
0: जाओगे।
1: लिया करो।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: नहीं मैं फिर कोई और नहीं, माँ होंगी, माँ तो कलीम मानक
0: ठीक
1: ते
0: है।
1: बाकी मैं तुम्हें गाना के भेजा सी पंजाब हरमीत जस्सी तो तुम लाया ही नहीं। पंजाब
0: केड़ा गीत सी? पंजाब।
1: बहुत सोहना गीत है। हाँ
0: अच्छा, वो पंजाब बारे ही है ना?
1: जी
0: ठीक है, मैं बंदे
1: माँ तो
0: ला
1: माँ
0: रही
1: माँ
0: हूँ।
1: बारे सारा कुछ
0: अच्छा, माँ बारे भी
1: मैनू
0: है?
1: नहीं पता, मैं तो गुस्से हैं सारा कुछ
0: नहीं।
1: पिछे ही
0: अच्छा, गुस्से हो तुसी?
1: मैं तो गुस्से हो जाने पर।
0: अच्छा ठीक है जी, अज ना लगे फिर गुस्से तो मैंने लभना पैना हूं है। चलो
1: फिर
0: ला
1: मैं दो
0: लेंगे।
1: दो दिन फोन ही नहीं करना।
0: अच्छा नहीं, उदे च जेदा माँ का जिक्र आंदा फिर अपा ने लाना।
1: माँ माँ ना होना
0: अच्छा बस फिर
1: तो
0: ला
1: सुन
0: लेंगे।
1: लो भला जी,
0: ठीक है, मैं ला दिंदी हूँ। ठीक है भाजी। पंजाब ते
1: बहुत
0: सिंगर
1: तरस
0: कौन
1: दिया
0: है?
1: माँ नु। हरमीत
0: सिंगर कौन है?
1: जस्सी, हरमीत जस्सी,
0: ओके चल, जस्सी तो है ना।
1: हरमीत कौर जस्सी, जस्सी हरमीत जस्सी है, कुड़ी है,
0: अच्छा ठीक है, मैं ला दिंदी हूँ।
1: बहुत सारा गाना हो।
0: ठीक है, थैंक यू भाजी।

0: का वीजा मेडिकल इंश्योरेंस नंबर हैगा जी 416-817-6500। दिस इज हरप्रीत सैनी, चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड सर्टिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: आप पंजाबी आ गए।

0: सिर्फ 999 च,
1: जिस विच मिलनगियां 8 आइटम्स। ए लाइव केटरिंग भी कर देने,
0: फंक्शन वड्डा होवे या छोटा, केटरिंग वाला ता सिरा ला देंगे।
1: एना कोल शानदार पार्टी हॉल भी आ, वो भी रीजनेबल फूड प्राइसेस ते।
0: इस फेस्टिवल सीजन बनाओ अपनिया खुशियां नु दुगना ते पहुंचो टिक्का जंक्शन।
1: कॉल 647-429-4040
0: टिक्का जंक्शन, खुशियां दा सेलिब्रेशन।
2: ना चाचा जी, आह 3 महीने हो गए थोनू मोड़ के ते कागज इकट्ठे कर दिया नु, हुण थई तुहाडी मोड़ के च प्रूफ नहीं होई है।
3: ओ तू रेफड़ा,
2: ओ मोड़ के च प्रूफ करानी पता किन्ना औखा काम है, 100 पापड़ बेलने पैंदे आ,
3: लग्गिया गल्लां मारदा।
2: ओ चाचा जी, मैं तां पहलां ही कहा सी भई फर्स्ट या सेकंड मोर्गेज दी लोड़ होवे, रीफाइनेंसिंग दी लोड़ होवे, ट्रक लोन या इक्विपमेंट लोन चाहिदा होवे, बिजनेस लोन या प्राइवेट लैंडिंग दी ही लोड़ क्यों ना होवे, तां सुन दे मेरी गल, जे सारे पास्यों होगी ना तां बांह फड़ू कमलजीत सरा। 416-356-1870 416-356-1870 पैगी पल्ले।
4: लो जी, इंडियन फ्रूट लैंड ते समर सेल लग गई है। दीप बेसन 399 दा, हैप्पी डायरी पनीर 399 दा, बंसी गुड़ 799 दा, मधानी दा दही $1.99 दा, पिल्सबरी चक्की आटा 999 दा, और पिल्सबरी मल्टी ग्रेन आटा वो भी 999 दा तुहानू मिलेगा। काले चने, मसूर दाल ते वाइट चने 399 दे 4 पाउंड, अदरक जेड़ा है 99 सेंट दा 1 पाउंड है, ते गाजरां 99 सेंट दियां 1 पाउंड, वो भी लाल गाजरां ने। वेजी थाली 499 दी, ते वेजी बिरयानी भी 499 दी। चिकन टिक्का रैप ए भी 699 दा मिलदा है। 499 दा आलू कुलचा, फिश टिक्का रैप जेड़ा ए 699 दा मिलेगा। सत दिया सत्ते लोकेशन ते सेल चल रही है इंडियन फ्रूट लैंड।
5: हेलो, हाँ जी,
6: कौन है?
5: पुलिस वाले हैं जी।
6: की काम है?
5: तुहाडे नाल गल करनी है जी।
6: अच्छा, किन्ने जाने हो?
5: असीं 4 जाने।
6: तो फिर आपस ही कर लो।
5: हैं?
7: Radio with a difference. The Dave Tatler Show.
4: खबर आई है कनाडा च दर्जना पंजाबियों दी पीआर एप्लीकेशन रद्द करतीं। कनाडा दे पीआर लई झूझ रहे पंजाबी नौजवानों का एक होर धरना नोवा स्कोशिया दे हैलीफैक्स विखे आरंभ हो गया। एक सोचने वाली गल है, एक समझने वाली गल है। सिर्फ पंजाबी धरना क्या, उन्होंने होर स्टूडेंट नहीं आते? इतने सारी दुनिया तो स्टूडेंट आते कनाडा के अंदर, धरने सिर्फ असी लाने? वाए, थिंक अबाउट इट। Anyway, ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस ते चलदे आ मदर स्टे ते सुल्तान जी तों लैणे आ की इनफॉर्मेशन दे रहे। सुल्तान जी, वेलकम अगेन।
8: थैंक यू वेरी मच जी। मदर डे स्पेशल प्रमोशन ते देव भाजी, असी 1, 2, 4, 10 नहीं 50 गिफ्ट भी रखे है। जे कोई भी साडे भैण भरा आउंदे आ और मदर डे स्पेशल डिस्काउंट दा फायदा लैंदे आ, एनी परचेज दे नाल गिफ्ट भी दिता जाएगा मदर डे दे उपर। खास तौर ते जे तुसी बिग स्क्रीन टीवी देख रहे हो तो मिस ना करना, मदर्स डे ते 85 इंच दा सैमसंग टीवी 999 दा, सिर्फ 8 टीवी इन स्टॉक है जी। 8 टीवी रह गए, 8 लकी कस्टमर कैन गेट इट 999 दा, सिर्फ 999 दा 85 इंच मिलेगा। वैसे तो जिस तरह मैं पहले भी दसिया, 55 इंच 399 दा, 65 इंच 699 दा, 75 इंच 799 च मिलेगा, पर 85 इंच जड़ा एक 11 तरीक तो बाद, 11 मई तो बाद $1500 दा हो जाना। आज 999 दा मदर्स डे स्पेशल प्रमोशन ते ले सकदे हो। टीवी बाय करन दे नाल गिफ्ट अपना कलेक्ट करना ना भुलना, क्योंकि मदर्स डे डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना, नाल गिफ्ट भी दिते जा रहे हैं। कल्ला फ्रिज लेना जी, 36 इंच वाइड फ्रेंच डोर फ्रिज है, $2500 वाला, 1799 ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਨਾਲ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਸਮੂਥ ਟੌਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਵ ਜਿਹੜਾ $1400 ਵਾਲਾ, 799 ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਨਾਲ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਟੋਲ ਟੱਪ ਦੀ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ $1000 ਵਾਲੀ, ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ 499 ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਦਰਸ ਡੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ $2200 ਵਾਲਾ, 1499 ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਨਾਲ ਮਦਰਸ ਡੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਮਿਸ ਇਟ। ਮਦਰਸ ਡੇ, ਮਦਰਸ ਡੇ, ਮਦਰਸ ਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ 40% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਹੋਮ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ। ਬੋਵੇਡ ਐਂਡ ਚੰਕੂਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, 801 ਬੋਵੇਡ ਡਰਾਈਵ ਵੈਸਟ, ਜਸਟ ਈਸਟ ਆਫ ਚੰਕੂਜ਼ੀ ਔਨ ਬੋਵੇਡ, 905 4

सुगंध वर्गा किस चरखे दी तंद वर्गा का उत्ते सज्जरी त्रेल वर्गा दो दिलां दे हुंदे मेल वर्गा बुड्ढे बाबल दे हाथ च डंगोरी वर्गा अमड़ी दी मिठी जही लोरी वर्गा गब्बरू ते चढ़ दी जवानी वर्गा किस प्यार नाल दित्ती होई निशानी वर्गा मिठी बोली वर्गा ते सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज व्यूज गीत संगीत हास्य ठट्ठे दे लैके रंग तुहाडे रूबरू।

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
4: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000
5: जे तुसी भी करना चाहुंदे हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557 टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घरां लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है तुसी अगर घरे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करवाना वेरी प्रोफेशनल टीम टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो
6: ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਮੇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ
5: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-504-1557 ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੇ

0: अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: क्या बात है, जरूर पहुंचो ते तुसी सिंपल इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट तो वधिया टॉप दी डीलां लो। रॉयल ऑटो सेंटर दे साडे मिस्टर राज भाई जी हाजिर ने। ऊबर या लिफ्ट दी सेफ्टी इंस्पेक्शन करवानी है, गड्डी दी इंजन ट्रांसमिशन दा ई टू जेड कोई भी